0: मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देश्टा का के मायनी है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देश्टा आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
1: योकात्ता देस,
2: अच्छा था।
0: योकात्ता, ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सिगा है।
1: तोतेमो निगिया का देश्टा,
2: बहुत पुर रौनक था।
0: तोतेमो के मायनी है बहुत और निगिया का देश्टा ना इसमें सिफत निगिया का ना यानी पुर रौनक का माजी का सिगा है।
2: तो सामईन मकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
3: ओसाका वा दो देश्टा का? योकात्ता देसु। तोतेमो निगियाका देश्टा।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। आप सफर से वापस आए हैं और किसी को बताना चाहते हैं कि सफर शानदार था। शानदार, एक ई इसमें सिफत है।
3: सुबाराशी, सुबाराशी।
0: तो सामीन कोशिश करें।
1: सुबाराशिकात्ता देस, सुबाराशिकात्ता देस।
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में हारूसान ने इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लें।
4: ओकायरी नासाई।
0: ओकायरी नासाई यानी दोबारा खुश आमदेद। कहीं बाहर से वापस आने वाले फर्द से कहा जाता है। अफराद खाना या बेतकल्लुफ दोस्त इसे मुख्तसर करके सिर्फ ओकायरी भी कह सकते हैं, जबकि होटल का अमला वगैरह बाहर से वापस आने वाले मेहमान को ज्यादा शायस्तगी के साथ ओकायरी नासाई मा से कहेगा।
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: ओकायरी नासाई,
6: ओकायरी नासाई,
7: ओकायरी नासाई।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें मियां सफर के बारे में अपने तासुरात बयान करती है।
4: ओकायरी नासाई, नागानो वा दो देश्टा का?
8: सुगोकु तानोशिकात्ता देसु। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। तोतेमो ओइशिकात्ता देसु।
4: सो देसु का, योकात्ता देसु ने।
8: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्सु देशिता।
9: तानोशी ल्योकोउ देशिता ने।
3: मिया नो ट्रैवल गाइड।
2: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। मिया ने नागानो का सफर किया था जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: हिरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
2: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
0: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योतो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
2: मुसाफिर खिड़कियों से बाहर का नजारा करते हैं या फिर बेंतो यानी खाने के डब्बों से लुत्फ अंदोज होते हैं।
0: कई मुसाफिर किताब पढ़ते हुए वक्त गुजारते हैं जबकि कुछ ऊँगते हुए भी नजर आते हैं। डिब्बे पुरसुकून और साफ सुथरे होने के बाद सफर नहायत खुशगवार होता है।
2: जी, और यकीनन आरामदेह भी।